0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ বল। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए

0: जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ. मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। यह स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में 3रे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रिकेल। The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
2: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
1: On the eve of the monsoon session, government yesterday convened an all-party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने

0: वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
2: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्दोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग लापता हैं।

0: लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
1: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले 5वें ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर

0: इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्य ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है, शीर्षक दिया है वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है, जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस टुडे। गवर्नमेंट सीक्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। President Draupadi Murmu to hold delegation-level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandu in Chisinau today. Madhya Pradesh Cabinet approves Uniform Civil Code Bill, tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings. A report.
3: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax Amendment Bill, Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 are also expected to be discussed during the monsoon session. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: On the eve of the monsoon session, the government yesterday convened a lawn party meeting at Parliament House. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engage in constructive discussions on key issues.
4: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the Business Advisory Committee.
2: Lok Sabha Speaker Om Birla yesterday chaired the meeting of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other business proposed to be taken up during the session. Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest, march and procession in the New Delhi district in view of Parliament session beginning today. In a social media post, The police said that Section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 is in force in the area. Hence, protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited in the area except Janta.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
2: Our voice gets you heard everywhere.
1: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
2: 6900453528।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ সৈতে।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: অগ্নিযুগৰ গান,
4: অগ্নিযুগৰ পিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম।
5: ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে আমাৰ দৈনিক আয়োজন অগ্নিযুগৰ গান।
4: অ' মোৰ প্ৰিয় জনগণ, মই গাওঁ তোমাৰ গান।
3: প্ৰতি পুৱা 8:15 পৰা 8:25 লৈ সুধা কণ্ঠৰ গীত,
5: বিবিধ ভাৰতে গুৱাহাটীত অগ্নিযুগৰ গান।

0: পঢ়ি আপুনি নিশ্চয় ভাল পায়। উপন্যাস বা গল্পৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিশ্চয় আগ্ৰহ আছে। বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটীয়ে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে উপন্যাস পাঠৰ এটি মনোৰম অনুষ্ঠান। প্ৰতি পুৱা 9 বজাত এতিয়াৰ পৰা শুনিবলৈ পাব ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠৰ অনুষ্ঠান। ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠ বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটীত প্ৰতি পুৱা 9 বজাত FM-ৰ 100.8 MHz।
1: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতাৰ কাষ চাপক।
2: Our voice gets you heard everywhere.
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দী আৰু 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
4: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জাগৃতি শৰ্মা। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले सदस्यों ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की बैठक 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि जब दोनों उत्पादक होते हैं तो इससे राष्ट्र का कल्याण और सभी जीवों की सुख शांति सुनिश्चित होती है।
5: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैश्विक छवि को सार्वभौमिक मान्यता और स्वीकृति मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मॉल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगी और मॉल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। मॉल्दोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मॉल्दोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं के साहस और दृढ़ता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के युवा अपने साहस, आत्मविश्वास और अथक परिश्रम के बल पर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहे हैं और यही विकासशील भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अगले दो दिन अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की जीत दिलाई। और घरेलू शेयर बाजार सूचकांक लगभग 0.7% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament began today when the Lok Sabha met at 11 a.m. The House paid tributes to six of its former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members, including from Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the House and maintain decorum, but the opposition members continued their protest, which led to adjournment of the

सैनिक भाइयों, कुछ ही पलों में हम शुरुआत करेंगे आज के सुरीली गीतों का सुहाना सफर। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही पलों में हम लेकर आएंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम संगीत माधुरी, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, समाचार के बाद 1:10 पर कार्यक्रम गीत माला।

1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वतन के तराने। 2 बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 बजे का समय है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल और नकाश अजीज की आवाजों में भारत फिल्म का ये गीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत ओम शांति ओम फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनाएंगे यस बॉस फिल्म का एक गीत अभिजीत की आवाज में। बोल है जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

हमारा अगला कार्यक्रम है संगीत माधुरी, लेकिन कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल मंगलवार है और रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आगाज होगा 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत।

12:38 पर कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत और 1:40 पर कार्यक्रम शीर्षक संगीत।

दो बजे से बारी बारी से आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। दिन के 2:30 बजे का समय है कार्यक्रम गुंजन का, और इसी के साथ हमारे कल के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे। फौजी भाइयों, ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत माधुरी। कार्यक्रम का ये पहला गाना सुनिए, तलाश फिल्म से, आवाज मन्ना डे की।

फौजी भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत माधुरी। अब सुनिए रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

समाचार के बाद हमारे इस प्रसारण में फौजी भाइयों आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अब से आप हमारे ये कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं मीडियम में 529.1 मीटर से।

और अब प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीतमाला। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है सारंगा फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीतमाला। अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सावन की घटा फिल्म से।

गीतमाला कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में चलती का नाम गारी फिल्म का एक गीत।

गीतमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्राग ज्योतिषपुर और साथ ही आकाशवाणी के डिब्रुगढ़ केंद्र से भी। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और जौहरी मुखर्जी की आवाजों में आईना फिल्म से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है देशभक्ति मूलक गीतों का कार्यक्रम वतन के तराने। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और राजेंद्र मेहता की आवाजों में शहीद फिल्म से।

वतन के तराने कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त।

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग है मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

दुनिया के नक्शे पर न जाने कितने मुल्क उभरे और वक्त की रेत में दबकर फना हो गए। मगर मैं आज भी जिंदा हूं,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: I appeal to members across all sides of the house to uphold the dignity, discipline and decorum of this august institution. While differences of opinion are integral to parliamentary democracy, they must be expressed in a manner that preserves the sanctity of the house.
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।

0: समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रूपये जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमरीका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमरीका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमरीका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग

0: पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने हमें हंसाया भी, रुलाया भी और सबसे बड़ी बात, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया। जी हाँ, आज बात होगी वर्ष 2009 की सुपरहिट फिल्म थ्री इडियट्स की। राजकुमार हिरानी के निर्देशन और विधु विनोद चोपड़ा के निर्माण में बनी इस फिल्म ने शिक्षा, दोस्ती और सपनों को एक नई पहचान दी। आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर और बोमन ईरानी की शानदार अदाकारी ने इसे यादगार बना दिया। आइए सुनते हैं पहला गीत सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान की आवाजों में।

इंजीनियरिंग स्टूडेंट। रेंजू, फरहान और राजू एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल का मानना है कि जिंदगी में सिर्फ नंबर और रैंक ही सब कुछ है, लेकिन रेंजू की सोच बिल्कुल अलग है। वो कहता है, सीखने के लिए पढ़ो, सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं। और यही से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। बातें जारी रखेंगे, आप सुनिए शान और शांतनु मोहित्रा की आवाजों में ये गीत।

इसके लिए उन्होंने अपना वजन कम किया। कॉलेजों में जाकर छात्रों को घंटों देखा और उनकी बॉडी लैंग्वेज सीखी। यही वजह है कि रणछोड़दास आज भी बिल्कुल असली छात्र लगता है। फिल्म की कहानी चेतन भगत के उपन्यास 5 Points Samoon से प्रेरित थे, लेकिन राजकुमार हिरानी और लेखक अभिजात जोशी ने इसे बिल्कुल नए अंदाज में लिखा, इसलिए फिल्म और उपन्यास में कई बड़े अंतर देखने को मिलते हैं।

करीना कपूर ने पिया का किरदार पहली बार सुनते ही स्वीकार कर लिया था। उन्हें ये पसंद आया कि उनका किरदार सिर्फ हीरो की प्रेमिका नहीं बल्कि अपनी सोच रखने वाली एक मजबूत लड़की है। अब आइए सुनते हैं फिल्म का ये गीत जिसे गाया है श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने।

आर माधवन ने फरहान का रोल निभाया, शर्मन जोशी ने राजू का किरदार निभाया, बोमन ईरानी ने वायरस बनकर यादगार अभिनय किया और करीना कपूर ने पिया का किरदार निभाया। ओमी वैद्य ने चतुर यानी साइलेंसर का लोर निभाकर दर्शकों को खूब हंसाया।

इन सभी कलाकारों की शानदार एक्टिंग ने फिल्म को यादगार बना दिया। श्रीदेव सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सोच है जो हमें सिखाती है कि सपने अपने होने चाहिए, सीखना दिल से होना चाहिए और दोस्ती जीवन की सबसे बड़ी दौलत होनी चाहिए। अब आइए सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है सोनू निगम ने।

राजकुमार हिरानी की आदत है कि वे कलाकारों को डायलॉग रटने के बजाय उन्हें समझने के लिए कहते हैं, इसलिए फिल्म के कई दृश्य बिल्कुल स्वाभाविक लगते हैं। फिल्म में फरहान के पिता के अभिनय दर्शकों के दिल में बस गया, क्योंकि वो हर उस माता पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं लेकिन उनकी पसंद सुनना भूल जाते हैं।

शिक्षा पर आधारित भारतीय फिल्मों में ये आज भी सबसे प्रभावशाली फिल्मों में गिनी जाती है। ये उस समय भारत की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसके बाद कई फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन इस फिल्म का प्रभाव आज भी कायम है। अब आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, जिसे गाया है सूरज जगन और शर्मिन जोशी ने।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

आज हमने यादों के पन्ने पलटे और जिया उस फिल्म को जिसने हमें सिखाया कि कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागो। कामयाबी तो झक मार कर पीछे आएगी।

राजकुमार हिरानी का मानना है कि अच्छी फिल्म वही होती है जिसमें मनोरंजन के साथ एक संदेश भी हो। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिल्म का सबसे प्रसिद्ध डायलॉग कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी, आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है।

चीजें सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हम सबकी जिंदगी का एक आईना है जो याद दिलाता है कि दिल पर हाथ रखो और बस कहो ऑल इज वेल। और इन्हीं सोचों के साथ फौजी भाइयों चैन का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। दिन के 3 बजे से आप सुनेंगे FM रेनबो प्रसारित कार्यक्रमों को। सनी भाइयों के हमारे आज के प्रसारण का अब यही होता है समापन। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए निमिषा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर लेकर आ गई है आपकी दोस्त शालिनी मित्तर। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का नया दिन, आज का नया रेडियो डॉक्टर और आपका वही पुराना चैनल और वही पुराना समय। जी हां, 3 से 4 बजे का यह समय होता है रेडियो डॉक्टर का और रेडियो डॉक्टर में आपको इंतजार होता है कि किस तरह से आज एक नया अंक आपके लिए ढेर सारी जानकारी लेकर आएगा। तो आज का भी ये अंक आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। क्या होती हैं ये बीमारियां और कैसे इनको जानकर इनसे बचाव किया जा सकता है और उपचार की प्रक्रिया क्या रहती है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको मिलेगी। सबसे पहले आपका परिचय आज के रेडियो डॉक्टर्स से करा दूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकुर नंदा। आप सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन कम यूनिट हेड है इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली में। नमस्कार सर।
2: नमस्कार मैम।
1: और हमारे दूसरे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेर अहमद खान। आप फिजियोलॉजिस्ट हैं और आप एक रिहैब इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है उमेर जी आपका।
2: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: तो जैसा हमने बताया श्रोताओं को, आज हम ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस पे बात करेंगे। पहला प्रश्न मेरा कि ऑस्टियोपोरोसिस, स्पॉन्डिलोसिस और कुछ और शब्द होते हैं इनसे मिलते जुलते जिसको हम अक्सर सुनते रहते हैं लेकिन हमें सबके मीनिंग नहीं पता होते हैं, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी। अंकुर सर, आपसे पहले शुरुआत करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ये तो मैंने बहुत अक्सर सुने हैं पर हमें, हमारे श्रोताओं को भी शायद फर्क नहीं पता होगा, तो शॉर्ट में बता दें।
2: मैम, मुझे लगता है कि ये इस आई थिंक 1 घंटे का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बहुत बार हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं जो कि अपना डायग्नोसिस लेकर आते हैं कि सर मुझे स्पॉन्डिलोसिस हो गया। सो आप समझे मैडम, ये अलग अलग शब्द हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नामक शब्द का मतलब है हड्डियों का कमजोर होना जो कि डेफिनेटली उम्र के साथ होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो शब्द है उसका मतलब है जोड़ों का उम्र के साथ खराब होना। अब ये आर्थराइटिस जो है अलग अलग टाइप के होते हैं पर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये उम्र के साथ होने वाले बदलावों में जो जोड़ों में बदलाव आता है उसके कारण होने वाला आर्थराइटिस है। तीसरा शब्द आपने कहा स्पॉन्डिलोसिस। अब स्पॉन्डिलोसिस आप एक तरीके से इस तरह से समझ लीजिए कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी का आर्थराइटिस है। मतलब कि जब भी हम एक्सरे करते हैं, अगर हमारी उम्र हो रही है थोड़ी 40 वर्ष 50 वर्ष, तो जरूर कोई ना कोई चेंज एक्सरे में दिखेगा और ये जो एक्सरे में दिखने वाले बदलाव होते हैं इनको स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस या स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दर्द दे ही रहा है। और अच्छा। चौथा शब्द जो आपने कहा स्पॉन्डिलाइटिस, जब भी रीढ़ की हड्डी में कोई पैथोलॉजी हो रही है, चाहे वो सूजन हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो वो स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बारे में फिर और बात करेंगे।
1: जी जी, तो हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। बेसिकली तो हमारा सब्जेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस है पर मुझे लगता है श्रोता हमसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टो या स्पॉन्डिलाइटिस पर भी सवाल जरूर पूछेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतने आपस में जुड़ते हैं कि डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। डॉक्टर उमेर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जब भी हम हड्डी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम फिजियोथेरेपी पर ही ध्यान हमारा जाता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है रिहैब के लिए फिजियोथेरेपी जब भी हम बोन डिजीज पर बात करते हैं?
3: देखिए, अभी सर ने बताया दो चीजों में डिफरेंस
1: जी,
3: और फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो बैक टू नॉर्मल लाइफ लाने में इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मर्ज या कोई भी प्रॉब्लम्स जब होती है तो फंक्शनल एबिलिटीज कम होते हैं जिसकी वजह से डीकंडीशनिंग इफेक्ट आता है। अब जब ऐसी जब बीमारियां होती थी मसल्स और बोन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तो फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंस ये है कि पहले तो आपका कुछ एक्सरसाइज ऐसे रहते हैं या फिर डायग्नोस्टिक के साथ आप इस तरह ट्रीट करते हैं कि वो प्रोसेस स्लो हो, मसल स्ट्रक्चर्स जो बीमारी होने के वजह से जो हो सकता है जल्दी वो बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे और उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत स्लो डाउन होते हैं या नहीं होते
1: हैं। जी, हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक स्पाइन सर्जन है तो उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी जरूर रहता है।
2: जी बिल्कुल मैम, ये टीम है, हमारा काम है सर्जरी करके जो भी हमारा अंग है शरीर का जो ठीक काम नहीं कर रहा है उसे वापस अपनी जगह पर लाकर बिठाना, बट उससे काम निकलवाना और उससे काम ले पाना, ये थेरेपिस्ट जरूर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते
1: हैं। बिल्कुल, तो ये जोड़ा होता है और ये जोड़ा आज हमारे रेडियो डॉक्टर में भी है। तो हम कोशिश करेंगे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपके जितने भी प्रश्न हैं, उनको यहाँ सॉल्व कर सके। और हम एक गीत सुन लेते हैं और यहाँ पर इस गीत के बीच में हम उम्मीद करते हैं कि हमें आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, तो हमारा ये कार्यक्रम आपके साथ आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस और स्पोंडोलोसिस के बारे में। और हमारे एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो
1: मैम नमस्ते, मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा है।
0: जी अनिल जी,
1: मैं प्रहलादपुर दिल्ली से बोल रहा हूँ, इधर सेक्टर 28 रोहिणी की तरफ से।
0: जी जी।
1: मेरी उम्र लगभग 55-56 साल की होगी। तो मैं 2017 में ही कुछ दिक्कत से वो D12 की दिक्कत, वैसे एक दो बार MRI कराया तो उसमें था, लेकिन दर्द हमें बहुत पहले से कमर में कभी इधर कभी उधर होता था। फिर इधर इधर दिखाया तो उन्होंने कहा कि स्पाइन सर्जरी होगी, वो मैंने करा लिया। वो मैं पर भी गया था तो रीढ़ में थोड़ी सी, बैकबोन में थोड़ी सी ईट की कोने लग गए, फिर भी चलते थे एक दो
0: अभी
1: दिन
0: क्या
1: के बाद।
0: पूछना चाहेंगे अनिल जी प्रश्न?
1: मैं ये इसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैं वाकर लेके ये 2-4 मिनट चल लेता हूँ, लेकिन बिना कुछ पकड़े मैं खड़ा नहीं हो पाता, तो इसका क्या कारण है? कुछ हो सकता है इसका निदान?
0: जी डॉक्टर साहब आप आपको बताएंगे।
2: जी सर नमस्कार। सर आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, आपका जो सवाल है एक्चुअली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आपको जो मुझे समझ आ रहा है, आप बिना वॉकर के सपोर्ट के खड़े या नहीं हो पा रहे या चल नहीं पा रहे हैं, मतलब कि बैलेंस जो है वो बनने में मुश्किल आ रही है। जिस तरह
1: अगर कोई किसी को कुछ पकड़ भी ले तो जब तक के जैसे डंडा टाइप का अगर जोर से दबाएंगे नहीं हाथ से तो पांव आगे नहीं बढ़ पाता।
2: हाँ मैं वही कह रहा हूँ सर, जो ये दिक्कत होती है नॉर्मली अगर स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर रहा होगा उस समय सर्जरी से पहले तो रीढ़ की नस के अंदर जो सूजन आ जाती है उससे परमानेंट डैमेज होने का डर रहता है, आशंका रहती है। और कई बार ये ऑपरेशन से इम्प्रूव होते हैं और कई बार अगर ऑपरेशन करने में लेट हो गया हो तो नहीं भी पूरी तरह इम्प्रूव हो पाता है। सो जो मुझे समझ आ रहा है शायद थोड़ा परमानेंट डैमेज नसों पर रहा है, बट जहां तक हमने देखा है अगर परमानेंट डैमेज हो भी अगर मरीज खड़ा हो पा रहा है तो एक्सरसाइजेज और रिहैब से उनकी सिचुएशन में सुधार जरूर मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रिहैबिलिटेशन का अगर कोशिश की जाए, थेरेपिस्ट साहब से मिला जाए और मेहनत की जाए तो आपकी सिचुएशन में सुधार आ सकता है। अभी तो मैं इतना ही कह पाऊंगा।
0: आप कुछ पूछना चाहें? डॉक्टर उमेर भी हमारे साथ हैं, फिजियोथेरेपी के वो जानकार हैं, तो किस तरह से फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है वो बता सकते हैं आप?
1: जी डॉक्टर नमस्ते।
3: नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया आपका।
1: जी। हाँ मैं तो इस बार अभी बताया आप सुन ही रहे थे, 2-2.5 साल में करवट भी नहीं बदल पा रहा था, तो एक्सरसाइज कराया है यहाँ तो अब इतने तक हो गए कि लोग उठ के पहले को हम बैठाता था कोई दीवान पे पलंग पे तो दोनों तरफ से पकड़े होता था, फिर मैं खाना खाता था, कभी इधर पलट जाते थे।
3: अभी
1: वही हाल खड़ा होकर चलने में है।
3: जी,
1: अगर
3: जी,
1: नहीं तो हाँ तो ये एक्सरसाइज की ही देन है कि मैं वाकर लेके टहल लेता हूँ 1-1.5 किलोमीटर तक, उसके बाद दोनों हाथ थक जाता है वाकर पकड़े पकड़े।
3: जी जी सर, तो सवाल आपका सही है लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपकी हिस्ट्री जाननी जरूरी है।

0: उसके अलावा इवैल्यूएशन करने की जरूरी है। आई थिंक जहां तक बात हुई मुझे समझा कि कुछ सर्जरी आपकी हुई है।
1: सर्जरी तो बैकबोन का वो D12 का बताए थे।
0: जी जी जी, तो डेफिनेटली कुछ दिनों तक बेड रिडन रहना पड़ता है। आपके सपोर्टिंग मसल्स जो है वो इफेक्ट होते हैं, बैलेंसिंग के लिए जो मसल्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन करके फिर जो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज है उससे बिल्कुल इंप्रूवमेंट आएगा। उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है कि आपके मसल्स कितने लॉस हुए हैं या आपको आपके सेंसेशन कैसे हैं। तो आपने बताया कि अभी की मैं उठ के ये चल पा रहा हूं या फिर सपोर्ट ले रहा हूं, उस वहां तक चेक करके बिल्कुल यहां पे रिहैबिलिटेशन या एक्सरसाइज आपको जरूर हेल्प करेगा।
2: चलिए बहुत धन्यवाद अनिल जी कॉल करने के लिए, और हमारे दूसरे श्रोता अभी इंतजार कर रहे हैं। आप जरूर जाइए और डॉक्टर साहब से मिलिए तो आपको वो गाइड करेंगे। हमारे पास एक मैसेज आया है, श्याम मित्तल जी ने लिखा है रोहिणी से कि क्या पूरे सिर में दर्द होना स्पॉन्डिलोसिस का लक्षण है, और रिमूविंग पिलो हैज हेल्प मी। क्या आप बताएं कि ये सच में हेल्प करता है या मुझे ही सिर्फ पिलो हटा के जब मैं सो रहा हूं तो मुझे हेल्प किया है इसने, और आई एम 74 इयर्स ओल्ड और मुझे डायबिटीज है 1984 से पर कंट्रोल में है।
3: श्याम जी धन्यवाद आपके सवाल का। देखिए ऐसा है, जब भी सिर में दर्द होता है उसके कई कारण हो सकते हैं, बट जो दर्द गर्दन के कारणों से या स्पॉन्डिलोसिस के कारण से होता है, यूजली ये जो दर्द है ये हमारे सिर के पीछे के भाग में गर्दन से जुड़ी हुई जगह पर दर्द होता है, और ये दर्द जो है वो नीचे कंधों की तरफ फैलेगा। बट मान लीजिए अगर दर्द बिल्कुल सामने की तरफ आंखों की ऊपर की जगह पे या कानों की ऊपर की जगह पे हो रहा है तो ये स्पॉन्डिलोसिस से रिलेटेड दर्द होने का चांस इसका बहुत ही कम है। आपका दूसरा सवाल था कि क्या तकिया लेना या ना लेना अच्छी चीज है। देखिए हमारी एडवाइस ये रहती है कि आप जब लेटते हैं तो आपकी गर्दन की सिचुएशन या पोजीशन वैसी रहे जैसे कि आप खड़े हो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में। इसलिए मैं यूजली ये एडवाइस देता हूं कि अगर आप सीधा सो रहे हैं तो एकदम पतला तकिया लीजिए ताकि आपकी गर्दन ऊपर को ना ज्यादा झुकी रहे, और अगर करवट लेकर सो रहे हैं तो तकिए की हाइट कुछ इस तरह की हो जो आपकी कंधे और सिर के गैप को फिल कर सके ताकि आपकी गर्दन ना ज्यादा नीचे जाए ना ज्यादा ऊपर जाए। सो अगर करवट लेकर सोना ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा मोटा तकिया, और अगर सीधा सोना पसंद करते हैं तो बिल्कुल पतला तकिया लीजिए, दैट विल बी आइडियल।
2: जी हमारे एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो,
4: कार्यक्रम की होस्ट और दोस्त शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार।
2: जी जी नमस्कार, और प्रश्न कर लीजिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं।
4: दोनों डॉक्टर साहबान को मेरा आदर प्रणाम।
3: चट्ठा साहब नमस्कार।
4: सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक दूसरे से लिंक है वो, कि हड्डियों में दर्द और कमजोरी और रीढ़ की हड्डी में कोई भी डिफेक्ट होना क्या हमारी डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, और इसमें क्या हमारा सिटिंग और वर्किंग पोज भी होता है, और ये होने के बाद अगर पेन किलर ली जाए तो उसके क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, कृपया बताने का कष्ट करें।
2: डाइट और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोस्चर, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और जोड़ देती हूँ स्क्रीन टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए डॉक्टर मेयर, क्या ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट करता है। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे तो यू नो एर्गोनॉमिक जो होता है डिजाइनिंग होता है काम का वर्क स्टेशन, और उसमें बहुत सारे गैजेट्स भी इन्वॉल्व हुए हैं, ये जितने एडअप हुए हैं वो लाइफ को कहीं ना कहीं सीडेंट्री लाइफस्टाइल बनाया है। तो उसके वजह से यू नो जितने मसल्स, अब हम लोग डी जनरेशन की बात कर रहे हैं तो मसल्स कहीं ना कहीं अंडर डेवलप्ड भी है, तो हमको डेफिनेटली ये सब चीजें तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है ही। डाइट एंड न्यूट्रिशन जो है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो भी रिलेटेड है, क्योंकि आपके डाइजेशन सिस्टम या जितना सिक्रेशन होना चाहिए जितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो भी नहीं होता है।
2: और एक प्रश्न का और था कि पेन किलर्स कितने नुकसान करते हैं अगर हम दर्द में ले लेते हैं?
3: सर देखिए ऐसा है, जो पेन किलर्स हैं ये अलग अलग टाइप के दर्द की दवाइयां होती हैं, कुछ पेरिफेरली एक्टिंग मतलब कि जो कि टिश्यू लेवल पे काम करते हैं, और कुछ सेंट्रली एक्टिंग पेन किलर्स हैं जिनको आमूमन भाषा में पेन किलर कहा जाता है। ये ज्यादा लेने पर किडनी पर जरूर असर कर सकती हैं, आपकी पेट की लाइनिंग को खराब कर सकती हैं जिससे कि खट्टी डकार, जलन हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा पेन किलर लेना डेफिनेटली अच्छा नहीं है। पर मैंने कई बार ओपीडी में मरीजों को देखा है कि सर मैं पेन किलर नहीं लूंगा, उनका बहुत एवर्जन रहता है। सो आप समझिए सर, पेन किलर्स जो होते हैं एक्चुअली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मतलब सूजन कम करने वाली दवाइयां हैं, और कुछ हद तक लेना भी जरूरी होता है। सो मेरी सलाह यह है कि पेन किलर्स आप अपने आप मत लीजिए, आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाइए, वो समझते हैं कि कितनी डोज कितने देर के लिए कौन सा दिया जाना चाहिए, आप उनकी सलाह करके ही लीजिए। पर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, डॉक्टर डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो सबसे ज्यादा सेफ पेन किलर्स में आता है पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम, है ना, 500 मिलीग्राम में बुखार कंट्रोल करता है, 650 में दर्द कंट्रोल करता है। तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, सिर्फ लिवर के मरीज ना लें, बाकी सभी मरीज इसको ले सकते हैं, सेफ पेन किलर है
2: जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक लिसनर ने पूछा था कि स्पॉन्डिलोसिस के कुछ उन्होंने लक्षण बोले थे कि सिर में दर्द होना क्या इसका लक्षण है, तो ये जानना चाहेंगे कि क्या लक्षण होते हैं, जैसे आपने बोला कि जरूरी नहीं है, तो वैसे किस कैसे पहचानने में आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है या स्पॉन्डिलोसिस है, क्या लक्षण होते हैं?
3: सुशालिन जी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहूंगा। कई लोगों को लगता है कि उन्हें स्पॉन्डिलोसिस है, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि जब भी गर्दन दर्द कमर दर्द होते हैं, डॉक्टर्स एक्सरे कराते हैं और मरीज जरूर एक्सरे की रिपोर्ट पढ़ते हैं और एक्सरे रिपोर्ट में रेडियोलॉजिस्ट ने लिखा होता है स्पॉन्डिलोसिस चेंजेस सीन। सो आपको समझना है कि इस वर्ड का मतलब यह है कि उम्र के साथ जो बदलाव होते हैं हमारे शरीर में, जैसे हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे कुछ बाल सफेद होते हैं, स्किन में रिंकल्स आते हैं, हमारे घुटनों में थोड़ा आर्थराइटिस होता है, उसी तरह रीढ़ की हड्डी में भी बदलाव आते हैं, उस शब्द को हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। स्पॉन्डिलोसिस एक्सरे रिपोर्ट में होना का मतलब यह नहीं है कि हमें कोई बीमारी हो गई है। हमारे कई कमर दर्द और गर्दन दर्द 90% जो है हमारी जीवन शैली से लेना देना होता है इनका, मतलब कि हमारी मांसपेशियां कमजोर हैं, हमारा बैठने का ढंग ठीक नहीं है, हमारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, या फिर हम कंटिन्यूसली दो दो तीन तीन घंटे लगातार बैठ रहे हैं, जो कि खुद एक अपने आप में एक हेल्दी आदत नहीं है। स्पॉन्डिलोसिस के इसलिए कोई सिम्टम्स नहीं है, बट अगर आप बोलें कि भाई स्लिप डिस्क के क्या सिम्टम्स है, क्योंकि स्लिप डिस्क भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हमें तंग करता है, तो जब भी कोई दर्द कमर से लेकर पीछे कूले से होते हुए, जांग से होते हुए पिंडली में जा रहा हो, करंट दे रहा हो, सेंसेशन दे रहा हो, तो नर्व प्रेस हो रही है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर अगर दर्द और स्टिफनेस सिर्फ कमर में है तो कुछ सिंपल पेन किलर्स, गर्म पानी की सिकाई, थोड़ी एक्सरसाइजेस 90% लोगों को आराम दे देंगी।
2: तो ऐसा आपका मानना है कि ये एक ऐसी डिसीज है जो होना है, मतलब 90% ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ एजिंग, तो उसको सेल्फ कंट्रोल भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही मेडिकेशन या उससे आगे जाया जाए।
3: बिल्कुल मैम, देखिए मेडिकल साइंस में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो ह्यूमन काइंड को तंग करती है वो जुकाम है और दूसरे नंबर पे कमर दर्द है। पूरे जीवन में 80% लोगों को एक ना एक बार कमर दर्द होता ही होता है, बट अच्छी चीज ये है 90% ऑफ द टाइम्स वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है। तो जरूर आपको कमर दर्द हो सकता है, पर अगर जीवन शैली को सुधारेंगे, कसरत करेंगे, तो ये सुधर जाएगा
2: जी। और ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस के डॉक्टर उमेर बताएं आप, क्या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं क्या वो हड्डी टूटने के बाद आते हैं तब पता चलता है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, ऐसा कुछ आपने देखा है?
0: अब पोरोसिस, ऑस्टियो मींस बोन एंड पोरोसिस मींस यू नो पोरोटिक, मतलब खोखला टाइप होना। अगेन आप देखेंगे तो ये डीजनरेशन का ही पार्ट है और इसमें हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं आप देखेंगे कि अगर एजिंग है तो सबसे पहले सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, मसल्स, ऐसा कोई भी इशू आर्थराइटिस यू नो डेवलप नहीं होता जब तक उसकी मांसपेशियां सपोर्ट सिस्टम जब तक डीजनरेट वो भी ना हो। द गुड थिंग इज कि ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो हाँ फ्रैक्चर्स और फॉल और अर्ली फ्रेजाइल बोन होने से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, बट अगर पोरोटिक है तो आप देखोगे पेन उनको रहता है। तो हमारा काम ये रहता है कि पेन सिम्टोमेटिक रिलीफ दो, मोडालिटीज दो, लेकिन सबसे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो उनका होता है मेंटेनेंस पे, उसका ये काम होता है कि आप सपोर्ट सिस्टम को सुधारो। तो आप पेन के साथ में आप मैनेज करते हुए कि ऐसे पेशेंट्स को हम एक्सरसाइजेस दे और उनका उनका चाल सुधरे, उनके जो मसल्स है वाइल्ड मूवमेंट उनको सपोर्ट करे, तो इससे बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होता है।
2: तो क्या ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद ही वो एक्सरसाइजेस की जा सकती है कि प्रिकॉशनरी उनको पहले से भी किया जा सकता?
0: बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए दो तरह का एक देखा जाता है सिक्रेशंस में भी या बोन फॉर्मेशन, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। क्लास्ट मतलब होता है कि कट डाउन ऑफ द बोन, यू नो देखेंगे कि पोरोसिस का ये है कि कैल्शियम आपका कट डाउन हो रहा है, पोरोसिस मतलब उसमें खोखला हो रहा है, और एक ब्लास्ट एक्टिविटीज है। सो अगर दो प्रोसेस है, अगर ऑस्टियोब्लास्ट यू नो बोन फॉर्मेशन या फिर डीजनरेशन को कम करना, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो होना जरूरी है। अब वो किस तरह होता है कि जॉइंट जो है या प्रेशर आने से या खेल कूदने से या फिजिकल एक्टिविटी करने से वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस रहता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है या मूवमेंट नहीं होता, तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटीज वो कंटिन्यूसली वो मात्रा ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली

0: एक्सरसाइज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जो आपके बोन कंडीशंस को, जॉइंट कंडीशंस को और मसल कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए
1: या बेहतर करने जो है वो बिल्कुल आपको इस कंडीशन से बचा सकते
0: बिल्कुल। और यही एक वजह है कि डी जनरेशन भी आज बहुत जल्दी एज में दिख रहा
1: है। जी जी, यहाँ पर हम फिर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और लौट कर आएंगे। आज हम ऑस्टियोपोरोसिस और स्पॉन्डिलोसिस पे बात कर रहे हैं।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज रेडियो डॉक्टर में बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस स्पॉन्डिलोसिस पर। हमारे रेडियो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर अंकुर नंदा और डॉक्टर उमेर अहमद खान। बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं डॉक्टर साहब, आप कहें तो हम इनको शुरू करें। एक श्रोता भी हमारे वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी।
2: हाँ जी, दोनों डॉक्टर साहब बोल सकते हैं। नमस्कार,
1: अपना नाम बता दीजिए।
2: संदीप बोल रहा हूँ मैं।
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: दिल्ली से बात कर रहे हैं
1: जी। अपना प्रश्न कर लें।
2: प्रश्न ये है, मेरा एक जानकार है, उसका ना गर्दन से ऊपर का ऑपरेशन हुआ था, और जब से ऑपरेशन होने के बाद में ना उसका एक हाथ ना काम करना छोड़ गया, यानी नाम मात्र काम करता 10-20%, यानी आंग इसी रीति रहती है, हाथ भी कम उड़ता है। जब ये कुछ भी नहीं हुआ था, ऑपरेशन की वजह से हो गया वो डैमेज। तो काफी मेहनत के लिए फिजियोथेरेपी ले ली, अब वो सोच रहा था कि ना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा दें, तो वो भी नहीं बन रहा, उसे ना वो ठीक हो रहा है, पता नहीं वो बीच में हटगा, वो उसको पता ही नहीं कि क्या हो गया, वो क्या इलाज करे क्या नहीं करे।
1: तो क्या अभी पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप?
2: हाँ जी हाँ, तो सब पूछना चाहेंगे ना कि क्या अगर वो ठीक हो सकता है या फिर डिसेबिलिटी परमानेंट डिसेबल हो गया है, वो क्या होगा उसके साथ?
1: आपको दिखाना पड़ेगा एक बार डॉक्टर साहब के पास जाकर। डॉक्टर अंकुर नंदा
3: सर, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। देखिए, मुझे पता है आप अपने दोस्त के लिए काफी चिंतित हैं, पर आप इस बात को समझे सर, सिर्फ इतनी जानकारी पे कोई सटीक जवाब दे पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। पर देखिए, यूजुअली अगर कोई कमजोरी आई है हाथ में, कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसके लिए ऑपरेशन हुआ है, और तो ही हमें पता चलेगा कि किस कारण से कमजोरी आ रही है। बट जो भी कमजोरी होती है सर, इनिशियल डेज में तो कसरत से इम्प्रूव होने का चांस काफी होता है, पर अगर मान लीजिए 2 साल के ऊपर हो गए हैं और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो फिर अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाह रहे हैं तो सर वो जरूर मिलेगा। पर आप इस बात को समझे, जितने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं ये सिर्फ सरकारी अस्पताल की जो मान्य कमेटी होती है उनके द्वारा जब इशू किए जाते हैं तभी ये मान्य होते हैं। तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर अगर 2 साल से ऊपर हो गया है उनके बोर्ड से मिलना पड़ेगा, और वहां से डेफिनेटली आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू होगा
1: जी। एक और हमारे लिसनर हमारे साथ हैं। हेलो
4: मैडम जी।
1: जी जी।

0: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब को नमस्कार
2: जी। नमस्कार सर।
1: हाँ सर, मेरे पीठ में ना लगभग एक महीने से बहुत दर्द है। मैंने डेक्सा कराया तो वो डॉक्टर बोले हड्डियों कमजोर है, एमआरआई में भी कुछ नहीं आया और मेरे चक्कर भी बहुत आते हैं और मेरा वेट भी बहुत लॉस हो गया। मेरे 6 फुट हाइट है, 59 वेट आ गया। तो क्या मैं टेस्ट कराऊं जिससे कि मेरे को कुछ चलना फिरना, मैं चढ़ता हूं तो ऐसा लगता है गिर रहा हूं,
0: बैलेंस नहीं हो पा रहा है।
2: सर आपकी उम्र कितनी है?
1: मेरी उम्र जी 51 है।
2: आप कह रहे हैं कि पीठ में काफी दर्द है और बैलेंस नहीं बन पा रहा है ना? ये दो तकलीफों से आप जूझ रहे हैं।
1: चक्कर बहुत आते हैं, जैसे घूमता हूँ मैं कभी कभी, एक दो दिन छोड़ के ऐसा चक्कर आता है कि जैसे घूम रहा हूँ बस।
2: और आपने बताया कि MRI हुआ है और MRI की रिपोर्ट नॉर्मल आई है।
1: जी
2: सर, देखिए जो MRI की रिपोर्ट अगर बिल्कुल नॉर्मल है रीढ़ की हड्डी की, तो फिर मैं समझता हूं कि सर कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से कोई हड्डी में खराबी हो रही हो, ये तो बहुत ही अनलाइकली है। क्योंकि सर MRI एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट होता है और ये बीमारी मिस नहीं करता है। अच्छा, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, कमर के दर्द जो होते हैं 90% लोगों में जीवन शैली की तकलीफों की वजह से होते हैं, मांसपेशी की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी और इन कारणों से। सो जहां तक मुझे लगता है, पहले ये आप ट्राई करके देखें, इन सब चीजों से इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। जो अभी मैं नहीं जवाब दे सकता वो है बैलेंस के ऊपर, क्योंकि बैलेंस कई कारणों से खराब हो सकता है। रीढ़ की हड्डी उसमें से एक कारण है, जो कि आप कह रहे हैं MRI बिल्कुल ठीक है पूरी रीढ़ की हड्डी का।
1: सर वेट लॉस क्यों हो रहा है?
2: सर वही मैं कह रहा हूँ, वेट लॉस के भी कई कारण होते हैं सर। तो इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा दो डॉक्टर साहब से मिलने का, फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट। क्योंकि अगर बैलेंस रीढ़ की हड्डी से प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो फिर ब्रेन के लेवल से या कान के लेवल से प्रॉब्लम हो सकती है।
1: हाँ, मेरे हाथ भी बहुत कांपते हैं।
2: हाँ, सो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलें सर और उनसे इवैल्यूएट करें, और वेट लॉस का भी आई थिंक वो फिर आपको कारण बता पाएंगे।
1: ठीक है, थैंक यू सर।
2: राइट सर
0: जी, हमारे पास मैसेज आए हैं और ये मैसेज हमको लिखकर भेजा है बीर सिंह जी हैं। कहां से है ये नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब मुझे बहुत सीवियर पेन है लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म में, और दो फर्स्ट फिंगर्स के सेंसेशन भी नहीं है लास्ट एक महीने से, और मैं जो मेडिसिन ले रहा हूं उससे मुझे 70% रिलीफ है। तो मुझे ये बताइए कि क्या मुझे मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए या फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए या सर्जरी पे जाना चाहिए, और अगर मैं सर्जरी कराता हूं तो स्पाइन सर्जन होना चाहिए कि न्यूरो सर्जन होना चाहिए, और रिस्क फैक्टर क्या है? बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं वीर सिंह जी।
2: वीर सिंह जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। देखिए जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपके गर्दन की एक गद्दी खिसक कर एक तरफ की नस को दबा रही है, जिस कारण आपको पूरे हाथ में दर्द आ रहा है और उंगलियों में सुनपन भी है। अब इस पूरी बात में अच्छी बात यह जो मुझे सुनने में आई कि आपने कहा कि आप ऑलरेडी 70% बेहतर हैं इस एक महीने के अंतराल में। सो मेरे हिसाब से वो बहुत ही एक अच्छी चीज है, क्योंकि आप इस समझे सर जो स्लिप डिस्क होती है 90% लोगों में दवाई कसरत फिजियोथेरेपी से 2 से 3 महीने के दरमियान ये सुधर जाती है। तो मेरे हिसाब से एक महीने में 70% इंप्रूवमेंट काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। सो मेरे हिसाब से आप जरा भी चिंता ना करें। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आपको हाथ में कोई कमजोरी तो नहीं महसूस हो रही है? क्योंकि देखिए अगर कमजोरी महसूस हो रही है तो फिर डॉक्टर का देखना बहुत जरूरी है, चेक करना जरूरी है। जब भी स्लिप डिस्क है सिर्फ दर्द सुनपन जलन है और कोई तकलीफ नहीं है, तो हम दवाइयों से फिजियोथेरेपी से कसरत से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर अगर कमजोरी होती है और ज्यादा कमजोरी है तो फिर ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। तो मेरी तरफ से अगर कोई कमजोरी नहीं है तो आप ऑपरेशन की ना सोचें, दवाइयां तो ले ही रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ संपर्क में आएं और कसरत और फिजियोथेरेपी शुरू कराएं, ये 70% से 99% में बदल जाएगा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है जी डॉक्टर उमेर।
3: सर ने ऑलमोस्ट सभी चीजें बोल दी है इसमें। अगर उनको यू नो रिलीफ है, और एक और चीज है कि शायद कमजोरी महसूस हो रही है
0: जी,
3: या
0: जी, ये अभी उन्होंने बताया नहीं।
3: हाँ, तो ये है कि नर्व कंप्रेशन तो है और उसमें भी डिस्क कितनी खिसकी उसकी भी मात्रा कुछ स्टैटिस्टिक्स रहती है कि जिसमें आपको रिकवरी के चांसेस है। तो इन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट बहुत है और रिकवरी भी हो रही है। तो पहला तो चेक करने की जरूरत है कितनी मात्रा है, उस पर भी एक्सरसाइज होते हुए जिसके मैकेंजी कंसर्ट्स वगैरह कहते हैं उससे इम्प्रूवमेंट होके वो गादी भी जगह भी आती है, बशर्ते वीकनेस बोला है तो आई थिंक फॉलो अप करके
0: फिजियोथेरेपी भी इसमें हेल्प कर पाएगी।
3: डेफिनेटली मैम, लेकिन उसमें भी बहुत सारी इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहते हैं। आप ये एक्सरसाइज नहीं दे सकते हो या एक तरह की एक्सरसाइज नहीं दे सकते हो जिसकी वजह से कंप्रेशन जो है, अगर अगर गादी जो है खिसक के ज्यादा आई है तो वो कॉर्ड की तरफ भी जा सकती है, ये हो सकता है। लेकिन वो तब हो सकता, कंसीडर करने की जरूरत है जब उनको वीकनेस ज्यादा डेवलप हो रहा है, और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो।
0: लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उतना घबराने की बात नहीं है। हमारे लिसनर वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो,
4: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते
4: डॉक्टर साहब
0: जी, अपना नाम बता दें और प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
4: मेरा नाम रंगीला है, अलीपुर से बोल रहा हूं।
0: हां जी, आप क्या पूछना चाहेंगे?
4: वो मेरा गर्दन करना से नहीं, वो दर्द करता है बहुत।
0: कब से है?
4: 8 महीना से हो रहा है, दवाई भी खाया और टोपू भी लगाया, फिर भी इतना ठीक।
0: जी जी, और आपकी उम्र क्या है डॉक्टर साहब, जरूर जानना चाहेंगे।
4: 20
0: जी डॉक्टर साहब।
2: रंगीला जी ये बताएं, गर्दन की नस से आपका क्या मतलब है, गर्दन में ही दर्द हो रही है या हाथों में भी दर्द जा रही है?
4: नहीं, हाथ में नहीं, गर्दन के नस से लेकर और कानों सब दुखता रहता है
2: जी। सो सुनने में यही लग रहा है कि ये मांसपेशी का दर्द होगा जरूर। आप क्या काम करते हैं?
4: कुछ भी ना करते हैं।
2: और मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हैं?
4: नहीं, मोबाइल के वही नहीं करते हैं।
2: अच्छा ठीक है, छोटा मोबाइल है। अच्छा ठीक है। सो देखिए ऐसा है, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, ये जो दर्द जो गर्दन या कमर तक ही सीमित है, ज्यादातर ये हमारी मांसपेशियों के दर्द होते हैं, नस के दबने के लक्षण नहीं है ये। और जब भी मांसपेशी का दर्द है, कुछ दर्द की दवाइयां, कुछ मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाली मसल रिलैक्सेंट्स और फिजियोथेरेपी जरूर मदद करेगी। तो जो भी घर के आसपास आपके फिजियोथेरेपी सेंटर्स हो उनके पास आप जाएं, थोड़ी फिजियोथेरेपी मशीनों से थोड़ी कसरत और कुछ दवाइयां शुरू करिए, मेरे हिसाब से बेहतर हो जाएगा, बहुत चिंता की बात नहीं है। साथ में
4: बुक मेरा बालक है 4 साल का, वो चलता बोलता नहीं है, उसका बताना क्या हो गया?
2: मैम ये बचपन से एक बार भी नहीं चला है?
4: नहीं, लोग खाना भी ना खाता है, ना खाली दूध पर रहता है, 4 साल का हो गया।
2: और जब से पैदा हुआ है तब से चला नहीं है?
4: नहीं।
2: मैडम ये बच्चों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा उन्हें, है ना। कई बार जब बच्चे पैदा होते ही रोते नहीं है तो उनके
4: हर चीज 6 महीने के बाद पता चला है।
2: 6 महीने के बाद पता चला है ना। हाँ। मैडम ये बच्चों के डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ेगा, मुझे लगता नहीं है कि ये रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड समस्या होगी।
4: हाँ
2: वही वही मैं कह रहा हूँ मैडम। सो आप उनको बच्चों को डॉक्टर को दिखाइए, वो इवेल्युएट करके आपको बता पाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और शीघ्र अतिशीघ्र आप जाइए उनको लेकर डॉक्टर के पास और दिखाइए जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हमारे पास ये मैसेज भी आया हुआ है, इसमें ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी उम्र जो है 72 इयर्स है, उमर नाम है इनका, निसार मास्टर इनका नाम है, इनकी उम्र 72 इयर्स है, मेरठ में रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरे कूल्हे में दर्द रहता है, पंजों में सूजन रहती है, पूरा दिन जो है मुझे परेशानी रहती है, और दवाई मैं खा रहा हूं लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा है, प्लीज बताएं क्या करूं।
2: निसार जी धन्यवाद आपके सवाल का। आपने कहा कूल्हे में दर्द हो रही है, पंजों में सूजन भी है, दवाई खाने पे भी बेहतर नहीं हो रहे हैं। हो सकता है सर कि आपकी नीचे की रीढ़ की हड्डी में नसों का दबाव हो रहा हो, जो कि उम्र के साथ होने वाले बदलावों के साथ होता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में लंबर कैनाल स्टेनोसिस भी कहते हैं। पॉसिबल है, मेरे हिसाब से जो भी नजदीकी हड्डी के डॉक्टर या न्यूरोसर्जन डॉक्टर साहब हैं उनसे मिले, वो जरूर आपको एक MRI का टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, आप वो जरूर कराएं ताकि हमें पता लग सके कि ये जो नसें में आपको दर्द हो रहा है ये क्यों हो रहा है। आगे की जानकारी बस ऐसी है कि सर देखो, अगर नसें दब रही हैं पर पैरों का हरकत मूवमेंट सही है तो 70% लोगों में दवाई कसरत से सुधार मिल जाता है, और कुछ कम ही लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है, बट अभी मेरे लिए भी कहना मुश्किल है, तो आप जरूर अपना MRI करवा लीजिए, उससे आपको और जानकारी मिलेगी सर
0: जी। हेलो
5: जी नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार,
5: मैं बीपी गौतम बोल रहा हूँ जी मेरठ से।
0: जी जी,
5: और मुझे पूछना है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर, तो कैसे एक आम आदमी पता लगाए कि मुझे स्टेबल एंजाइना हो गया या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या फ्रोजन शोल्डर हो गया,
0: लक्षण जानना चाहते हैं
5: बताने की कृपा करें।
0: अभी हम पहले बात भी कर रहे थे गौतम साहब, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड फ्रोजन शोल्डर, इसके कुछ लक्षण होते हैं डॉक्टर साहब?
2: गौतम जी आपने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया है, 3 अलग अलग अंगों को एक साथ आपने इन्वॉल्व कर लिया है। आपने कहा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर और अनस्टेबल एंजाइना। सो एंजाइना हार्ट से रिलेटेड है, फ्रोजन शोल्डर डेफिनेटली शोल्डर से रिलेटेड है, और सर्वाइकल डेफिनेटली गर्दन से रिलेटेड है। एक एक करके लेते हैं। यूजली जो स्पॉन्डिलोसिस या फिर हम कहें कि जो गर्दन के दर्द हैं, अगर सिर्फ गर्दन में ही दर्द हो रहा है तो मांसपेशियों का दर्द है, बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है, कसरत से सुधरेगा। अगर दर्द गर्दन से चलकर पूरे हाथ में जा रहा है और साथ में सुन भी हो रहा है, कीड़ियां चल रही हैं, करंट लग रहा है तो ये नस दबने के लक्षण हैं। इसके लिए आपको सीधा डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए और एमआरआई टेस्ट कराना चाहिए। अब आते हैं फ्रोजन शोल्डर पे। फ्रोजन शोल्डर जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, कंधे का जाम हो जाना, ये कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपने कंधे को

0: 90 डिग्री पर ऊपर उठा के आगे और पीछे घुमाकर देखिए, अगर ये 90 डिग्री तक नहीं उठ रहा है, आगे पीछे घुमाने में बहुत ज्यादा कंधे में दर्द हो रही है, तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली फ्रोजन शोल्डर है। और यूजली ये धीरे धीरे कसरत से, दवाइयों से सुधरता है, कुछ लोगों को इंजेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। अब आते हैं एंजाइना पे। देखिए, मैं हार्ट एक्सपर्ट नहीं हूं, बट जो टिपिकल एंजाइना के पेन्स होते हैं, ये हमारे छाती के आगे के भाग में और हाथ बाएं हाथ की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, और इनको डिफरेंशिएट करना जब हाथ में दर्द जा रहा है बहुत जरूरी है सर्वाइकल पेन से। तो आप ऐसे समझें कि जब आगे छाती की तरफ पेन हो रहा है और साथ में हाथ में जा रहा है, तो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। एक नुस्खा है जो आप ट्राई कर सकते हैं, यूजुअली जो गर्दन से रिलेटेड दर्द हाथ में जा रहा हो, अगर आप हाथ को उठाकर अपने सिर पे रख लें, तो गर्दन से रिलेटेड जो दर्द है सर, वो इमीडिएटली कम या गायब हो जाएगा, पर जो हार्ट से रिलेटेड दर्द है सर, वो कम नहीं होगा। तो ये एक तरीका है जो कि हमें कुछ केसेस में मदद करता है जानने के लिए कि हार्ट से रिलेटेड दर्द है या गर्दन से।
1: जी जी, तो डॉक्टर उमेर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो जो बातें हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से लक्षण बताए हैं सबके अलग अलग, तो इन सारी ही चीजों में क्या फिजियोथेरेपी वर्क कर सकती है?
2: बिल्कुल मैम, सर ने ऑलमोस्ट सभी चीज एक्सप्लेन। मैं कुछ एड ऑन करना चाहूंगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की अगर बात करें तो एक डिजनरेटिव चेंजेस है या फिर इनिशियल पेन भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन एज कितने बार उनको गर्दन दर्द हुआ है। उसके अलावा गर्दन की जैसे डिफरेंशिएट तीन चीजों का, शोल्डर अगर सर्वाइकल की बात करेंगे तो सर्वाइकल की वजह से झुंझनाहट पेन होता है, वो जरूरी नहीं कि आपके फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड हो। दूसरा, आप सर्वाइकल मूवमेंट का देखें, चारों तरफ कितनी मूवमेंट होती है। अगर हम लोग फ्रोजन शोल्डर को देखें तो ये यूजुअली इमीडिएटली नहीं होता है, कोई पुराना इंजरी हो सकता है, और फ्रोजन शोल्डर पेन जो होता है वो कंटिन्यूसली इनिशियली होता है, महीने कंटिन्यूस कुछ दिनों तक होता है। तीन स्टेजेस उसमें होते हैं जिसमें आपके मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होते हैं या मूवमेंट पेनफुल होते हैं। थर्ड अंजाइना के मैं आई थिंक एक्सप्लेन करता हूं, तो ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: एक लिसनर है फोन लाइन पर। हेलो
3: हेलो, डॉक्टर साहब को और आपके पूरे स्टाफ को
1: जी जी जी नमस्कार। अपना नाम बता दें।
3: शशिकांता बोल रही हूँ मैं।
1: जी, कहाँ से? जी जी, चलिए अपना प्रश्न करिए।
3: दिल्ली से मैम। मेरे जो है ना बहुत सारी तकलीफें हैं, और मैं ट्रीटमेंट लेते लेते भी जो है ट्रीटमेंट लेने के बावजूद मेरी प्रॉब्लम बड़ी ही नजर आती है, लेकिन घट नहीं रही है, समझ नहीं आती क्या करूँ मैं।
1: जी, आप शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहें, क्योंकि डॉक्टर साहब को समझ में आएगा आप किस विषय में जानना चाह रही हैं।
3: मेरे घुटनों की भी प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन भी है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम भी है, बैक पेन भी बहुत रहती है, गर्दन में भी अकड़ान रहती है, शोल्डर्स भी पेन में रहते हैं।
1: तो आप कहीं पे अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ टेस्ट हुए हैं आपके?
3: मैं फिजियोथेरेपी भी इस टाइम ले रही हूँ, पहले भी मैंने ली थी घुटनों के लिए।
1: उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है आपको?
3: मैं गिर गई थी, एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद हम 2-3 साल पहले एक बार पैर स्लिप हो गए थे, दूसरी बार, अब तीसरी बार हमें फरवरी 3rd week में हम फिर से गिर गए थे, तो उसकी वजह से हमारे जो बहुत ज्यादा पेशेंट हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उसमें थोड़े मेडिसिन खाकर जो है पेन किलर हम खाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी किडनी इफेक्ट हो गई थी घुटनों की वजह से, हम पेन किलर खाते थे।
1: चलिए, तो
3: हम पेन किलर खानी पड़ती है।
1: जी, डॉक्टर साहब समझ गए हैं, काफी सारी समस्याएं हैं डॉक्टर साहब इनके साथ, और बैलेंसिंग अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ इश्यू है, क्योंकि बार बार गिरना और इस तरह से इनको चोट लगती
3: है। कुछ वैसे कुछ पता नहीं, रास्ते में आ गया होगा तो उस वजह से बाय चांस गिर गई, नॉर्मली नहीं गिरते।
1: अच्छा, ठीक है,
3: नॉर्मली ऐसा नहीं है, हाथ पैर भी चोटते हैं, वीकनेस समझू मैं क्या समझू, कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या पर्टिकुलर क्या ले सकते हैं आपका?
1: डॉक्टर कुनंद आपको बता रहे हैं।
0: जी शशिकांत जी नमस्कार, आपकी उम्र पूछ सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी, 17।
0: हाँ,
3: ये ट्रीटमेंट मैं 2018 से ले रही हूँ मैं। 2018 में हमारा सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, तब से हम ठीक ही नहीं हो पाए।
0: जी शशिकांत जी, देखिए अभी आपके केस में मुझे लगता है कि दो चीजें हो सकती हैं। एक, आपकी उम्र 70 वर्ष की है, हमें पता है कि उम्र के साथ काफी जोड़ों में एक साथ बदलाव आ सकते हैं, कंधे, और सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले जोड़ कंधे, कमर, और एक तरीके से आप मानिए ये घुटने के जोड़ ही होता है ना, और आप तीनों जोड़ों में ही बता रही हैं। सो कमर, घुटने और शोल्डर्स है ना, ये तीनों ही ज्यादा उम्र के साथ इफेक्ट होते हैं, हो सकता है कि उन्हीं की वजह से हो रहा हो। एक दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ज्यादा जोड़ों में प्रॉब्लम हो रही है तो ये गठिया का

0: प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो मेरा
1: ट्रीटमेंट लिया था, वो भी ट्रीटमेंट लिया था हमने।
0: हाँ, तो गठिया के डॉक्टर साहब ने बताया था कि गठिया है मैडम कि नहीं है?
1: हाँ, बताया? दो तीन साल पहले हमने लिया था।
0: हाँ, तो उन्होंने बताया था कि गठिया है या नहीं है?
1: हाँ जी, उन्होंने चेक किया था।
0: हाँ मैम, देखिए अगर गठिया है तो आप इस बात को समझे मैडम, गठिया जो है ये कंट्रोल हो सकता है, ये खत्म नहीं होता है।
1: नहीं, तो अगर गठिया नहीं है, इस टाइम गठिया नहीं है, इस टाइम हम फिर से गिरने की वजह से हम सीरियस प्रॉब्लम फिर से आ गए हैं।
0: मैडम देखिए, अगर इतना सब है तो मेरी सलाह यही रहेगी जैसे शालिनी मैम कह रहे थे, फिर आप मैडम एक बार डॉक्टर साहब को अस्पताल में दिखाएं, हमारे यहाँ आना चाहें तो हमारे यहाँ आ जाइए।
1: एड्रेस और शुभ नाम बता दीजिए।
2: अभी कार्यक्रम आप सुनती रहिए और कार्यक्रम के अंत में मैं जरूर आपको नाम पता चल जाएगा डॉक्टर साहब का। और बहुत सारे मैसेज हमारे पास हैं, समय की बहुत कमी हो रही है डॉक्टर साहब। ये हमें एक मैसेज किया है संजीव और ज्योति ने, इन्होंने लिखा है कि हम मेरठ में रहते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, ये जानना चाहते हैं।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। देखिए जैसे हम अभी कार्यक्रम के शुरुआत से बात करते आ रहे हैं, स्पॉन्डिलोसिस शब्द उम्र के साथ होने वाले बदलावों को कहा जाता है। अब ये सर्वाइकल में है तो गर्दन का स्पॉन्डिलोसिस, और लंबर में मतलब लोअर बैक में है तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस है। और जहां तक मैंने पहले भी कहा, स्पॉन्डिलोसिस शब्द जो है सर रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके एक्सरे में स्पॉन्डिलोसिस लिखा है तो उसी से प्रॉब्लम हो रही है। ज्यादातर स्पॉन्डिलोसिस से कमर दर्द होता है, कमर दर्द कसरत करने से, वजन कंट्रोल रखने से, बैठने के ढंग का ध्यान रखने से सुधर जाता है। पर अगर पैरों की तरफ खिंचाव आ रहा है तो फिर डिस्क की समस्या हो सकती है, समझ रहे हैं? सो लंबर स्पॉन्डिलोसिस कुछ नहीं है, सिर्फ उम्र के साथ होने वाले बदलाव है
2: जी। एक हमारे कॉलर को ले लेते हैं। हेलो
3: जी मैम, शालिनी मैम गुड आफ्टरनून, डॉक्टर गुड आफ्टरनून
2: जी।
3: सर माय नेम इज संजीव
2: जी
3: एंड आई हैव गॉट हर्निएटेड डिस्क एट L3 एंड L4 एंड C3 एंड C4, द टू ऑफ देम, एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस फॉर द लास्ट 2 इयर्स। माय मेन प्रॉब्लम इज दैट इन स्पाइट ऑफ कॉन्स्टेंट फिजियोथेरेपी एंड ऑल, द लेफ्ट साइड ऑफ माय लेग, लेफ्ट थाई एंड द राइट साइड ऑफ माय राइट थाई आर सुपर सेंसिटाइज्ड, लाइक दे हैव दिस कॉन्स्टेंट इरिटेटिव फीलिंग ऑन द पेरिफेरी।
0: जी संजीव जी, धन्यवाद आपके सवाल का। मुझे ये बताएं, ये जो आपको दोनों पैरों में सेंसिटिविटी हो रही है, क्या ये आपको चलने से या खड़े रहने से रोकती है? क्या आपका चलना इनकी वजह से रुक जाता है या कम हो गया?
3: सर अगर ज्यादा देर तक चलूं या ज्यादा देर तक खड़ा रहूं तो वो पूरा लॉकअप हो जाता है
0: जी। सो देखिए सर, जब भी ये स्लिप डिस्क टाइप की सिचुएशन होती है जिससे पैरों में दर्द या सुनपन हो रहा है, हम 1.5 से 3 महीने के लिए दवाइयां, कसरत, फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं। बट अगर मान लीजिए 3-4 महीने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, देन इसका अगला स्टेप है कमर में इंजेक्शन, जिनको कि हम रूट ब्लॉक्स कहते हैं, वो ट्राई करना। और अगर कमर के इंजेक्शन से भी फायदा नहीं मिलता है तो फिर सर्जरी की तरफ सोचा जा सकता है, अगर मैचिंग सिम्टम्स है MRI के साथ।
2: और ये आप इसके बारे में और जानने के लिए या और आपको डिटेल चाहिए तो आप डॉक्टर साहब से सीधे जाकर संपर्क करें और उनसे बात करें। बहुत सारे हमारे श्रोता है जो मैसेज लिख चुके हैं, वेट कर रहे हैं अपने प्रश्न के जवाब का। और ये लिख रहे हैं शौविक सामंता जी की, योगा कैसे हेल्प करता है, ये प्रश्न हमें किया है दूसरे हमारे श्रोता ने कि रिवर्स शोल्डर ऑपरेशन क्या होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डॉक्टर साहब जो हम शायद यहाँ पर समय की कमी के कारण डिस्कस नहीं कर पाएंगे। राकेश जी लिख रहे हैं कि नी लिगामेंट ट्रीटमेंट क्या होता है, नी का लिगामेंट ब्रेक हो जाए तो क्या किया जाता है। और यशपाल जी मुझे लिख रहे हैं द्वारका से कि डेक्सा स्कैन किस एज में कराना चाहिए। सर ये हम ले सकते हैं प्रोग्राम क्योंकि क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबे लंबे और आंसर्स होंगे तो शायद समय नहीं मिल पाएगा। डेक्सा स्कैन कब कराना चाहिए
0: मैडम? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और डेक्सा वाला सवाल ही पहले लेंगे। देखिए ऐसा है, पहले हमें समझना है कि डेक्सा स्कैन किस लिए करते हैं। डेक्सा स्कैन हम करते हैं हड्डी की मजबूती या कमजोरी समझने के लिए। अब फिर ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर कमजोरी कब होती है, किसे होती है। सो अनफॉर्चुनेटली ऑस्टियोपोरोसिस जो है ज्यादातर महिलाओं को इफेक्ट करता है, और ये इसलिए इफेक्ट करता है क्योंकि जब महिलाओं में जो मंथली पीरियड्स हैं, मेंसेस हैं, जब ये खत्म होते हैं तो इनके शरीर में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है ये सर्कुलेट होना बंद हो जाता है, इसकी मात्रा चली जाती है और ये हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है। सो हड्डियों में से कैल्शियम लीक होने लगता है जिससे कि हड्डियां कमजोर होती हैं। सो सबसे पहले तो वो महिलाएं जो मेनोपॉज के पास है या मेनोपॉज हो गया है, उन्हें डेफिनेटली एक डेक्सा स्कैन करना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि उस समय हड्डियों की क्या सिचुएशन है। अगर शुरुआती टाइम पे ही बहुत हड्डियां कमजोर हो गई हैं तो ट्रीटमेंट शुरू करना जरूरी है। मेल्स में यूजली डेक्सा स्कैन 70 वर्ष के बाद ही हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि मेल्स में समहाउ नेचुरली ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन होने का

0: डॉक्टर को होने के चांसेस बढ़ते
1: हैं? चांसेस हायर है मैडम।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो अगर हमें ये जानकारी होती है कि हमारे घर में है हमारे सीनियर्स,
1: अगर आपके बड़े बूढ़ों में लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस
0: है, डेक्सा स्कैन पहले कराना चाहिए,
1: आपको सही समय पर करा लेना चाहिए और डबल केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मैडम देखिए ऑस्टियोपोरोसिस का बेस्ट इलाज है प्रिवेंशन, इसे होने ही मत दीजिए।
0: जी जी बिल्कुल। तो इसके लिए क्या हम लाइफस्टाइल पे तो हमने बात की, डाइट पर भी हमने थोड़ी सी बात की, तो क्या कुछ कैल्शियम या विटामिन डी या मल्टी विटामिन, इन सब का भी कुछ रोल होता है?
1: हम सभी चीजों का रोल है एक्चुअली। सो मैं यूजुअली ये एडवाइस करता हूँ कि जब आप ऐसी उम्र में पहुंच रहे हैं जब पीरियड्स बंद होने वाले हैं, आप कैल्शियम विटामिन डी उसी समय शुरू कर लें, पीरियड्स बंद होने से पहले ही एक दो साल पहले शुरू कर लें। सो कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा हमारी बॉडी में जरूर नॉर्मल रहनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ जैसे डॉक्टर उमेर ने कहा, कसरत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैडम जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे हमारी हड्डियों पे वजन आ रहा है, ये हड्डियों को और मजबूत होने में मदद करती हैं, ये बॉडी का नेचुरल सिस्टम है। सो कसरत, कैल्शियम विटामिन डी का सपोर्ट और साथ ही साथ खुराक, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, सोया है, अगर वेजिटेरियन है तो जो भी प्रोटीन जो हमें मिलती है जैसे कि स्प्राउट्स हैं, ये सब जरूर लें, क्योंकि हड्डियों में हम सोचते हैं कि सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी है, एक्चुअली हड्डियों का एक बहुत बड़ा पार्ट प्रोटीन से बना होता है।
0: अच्छा।
1: तो प्रोटीन इंटेक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो सही डाइट, कैल्शियम और विटामिन डी का सपोर्ट प्लस एक्सरसाइज, ये आपको हड्डियों को कमजोर होने से रोकता है।
0: जी, सीमा जी ने हमें अपनी पूरी रिपोर्ट भेजी है, तो सॉरी सीमा जी, हम रिपोर्ट यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। आपने सिर्फ साथ में लिखा है कि लॉट ऑफ पेन इन माय बैक विद रिपोर्ट्स, तो ये रिपोर्ट लेकर आप जरूर डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में रिपोर्ट्स यहाँ पर नहीं लेते हैं। और भी बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस हैं, नाम भी लेने का समय नहीं है। विभा पारिक जी ने लिखा है हमें, बहुत सारे विपिन जी ने लिखा है, और भी बहुत सारे श्रोता है जिन्होंने हमें लिखकर भेजा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, और इस कार्यक्रम को जिसने भी पूरा सुना उसे बहुत कुछ आज जाने को मिला होगा। चलते चलते बस मैं ये चाहूंगी आप दोनों दो दो मिनट लेकर जितना समय है उतने में आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें हमारे श्रोताओं को, जैसे आपने बताया डॉक्टर उमेर कि आप पिलाटिस करवाते हैं, आप फिजियोथेरेपी अपने इंस्टीट्यूट में कराते हैं, तो किस तरह से ये हेल्प कर सकता है इन बीमारियों से बचने में?
2: बिल्कुल, जैसे अभी किसी ने योगा की बात की
0: जी, हाँ।
2: हम लोग एरोबिक्स भी सुनते हैं, पिलाटिस भी सुनते हैं। एज अ फुल एक्सरसाइज प्रोटोकॉल में बात करूं, योगा माइंड एंड बॉडी कनेक्शन है, हर बॉडी के नेचुरल जो नेचर में है उसकी पोस्चर्स को और माइंड कनेक्शंस का, यू नो, मोर वर्क्स ऑन माइंड एंड बॉडी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। पिलाटिस जो है वो अभी नया कंसेप्ट है, जो कि पेट पे, यू नो, एब्डोमिनल मसल्स एंड ऑल दी पोस्चरल मसल्स पे काम करता है, बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। और ये जो है मसल्स को, जैसे डीकंडीशनिंग की बात करें तो उसमें बहुत सपोर्ट करता है, बैलेंसिंग मसल्स बहुत सुधारता है। और जब यू नो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि आप कोई बॉडी वेट नहीं यूज कर रहे हो, आपकी अपर बॉडी या लोअर बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी रहती है, तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो ये जितने जोड़ों के दर्द है या बॉडी के दर्द है, कमर के दर्द, सभी मसल्स को सपोर्ट सिस्टम का बहुत अच्छा डेवलप करके रखता है। उससे क्या होता है, आपके जब कोई इश्यूज होते तो रिकवरी में भी हेल्प करता है, इंजरी प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है। दूसरी कुछ एक्सरसाइज की अगर बात करें, एरोबिक्स की बात करें, तो डेफिनेटली यू नो एक पूरी बॉडी के कंडीशनिंग के साथ साथ आपके हार्ट की कंडीशन को भी बहुत अच्छा रखता है।
0: डॉक्टर अंकुर नंदा, आपके क्या क्लोजिंग कमेंट्स रहेंगे?
1: हम क्लोजिंग कमेंट्स वही है जो सामान्य ज्ञान सभी को पता है, बस उसको स्ट्रेस करना चाहूंगा, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, है ना, एटलीस्ट हफ्ते के 5 दिन, अच्छा खाना, पौष्टिक आहार लीजिए और वजन ना बढ़ने दें, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत ही कम, जितना मॉडरेशन में कर सकते हैं, स्मोकिंग तो ना ही करें तो बेटर है, ड्रिंकिंग इन अ वेरी मिनिमल अमाउंट कैन बी डन। और साथ ही साथ अपना स्क्रीन टाइम कट डाउन करिए, वॉक्स पर जाइए और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए।
0: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने आज के दोनों रेडियो डॉक्टर्स को कि आप समय निकालकर यहाँ आए हैं, और आज हमने बात की ऑस्टियोपोरोसिस एंड स्पॉन्डिलोसिस की, और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए। और अगर हम चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि जो भी हम यहां से बता रहे हैं वो आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए बता रहे हैं, अगर आपको कुछ लगता है तो आप डॉक्टर से मिलिए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, चेकअप कराइए, और उसके बाद जैसा ट्रीटमेंट मॉड्यूल वो बताते हैं उसको फॉलो करें। प्लीज प्लीज अपने सुनकर कोई भी चीज शुरू ना करें। हमारे साथ रहे डॉक्टर अंकुर नंदा, सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन कम यूनिट हेड इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर न्यू दिल्ली, और डॉक्टर उमेर अहमद खान जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।

0: नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए।
1: थैंक यू सर।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

का 4 बज चुके हैं। पेश है इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की शुरुआत में ही विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत लाभदायक सिद्ध होते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए, विपक्ष को संसद को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। दिल्ली पुलिस ने मीडिया में चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में मोल्दोवा गणराज्य पहुंची। चिशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये इस प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण हॉर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी के बाद चारधाम यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। पुरुषों के क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल रात लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए 3रे वनडे मैच में भारत को 27 रनों से हराया और 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फुटबॉल के जबरदस्त फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के लिए एकमात्र गोल किया। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: वेलकम दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम अल्फा चैन और आकाशवाणी रेनबो पर। इस कार्यक्रम को लेकर आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आरजे शालिनी। दोस्तों, खास सोमवार के दिन अल्फा चैन में हम आपके लिए लेकर आते हैं यूथ स्पीक्स, यानी आप में से ही किसी खास को मिलता है मौका यहाँ हमारे स्टूडियो में आने का और आपसे बात करने का, वो भी आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर। जी हाँ दोस्तों, आज ये मौका मिला है स्मृति को। स्मृति एमए पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं। नीति निर्माण, टेक्नोलॉजी और शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में उनकी गहरी रुचि है। इसके साथ ही वो कई सामाजिक संगठनों के साथ काम कर चुकी हैं। तो स्मृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर।
2: हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ स्मृति।
1: तो स्मृति, आज आप किस टॉपिक पर बात करने वाली हैं?
2: मैं आज यूपीएससी अनएम्प्लॉयबिलिटी के टॉपिक पर बात करना चाहूंगी।
1: तो बिल्कुल स्मृति के साथ आपका ये सफर बहुत ही सुहाना रहने वाला है, क्योंकि स्मृति बात करने वाली है एक ऐसे मुद्दे की जो आप लोगों से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं इसको लेकर एक समस्या, एक दुविधा रहती है कि कैसे इसको क्रैक किया जाए, और अगर क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो क्या किया जाएगा। तो इसके बारे में होगी बात आज के यूथ स्पीक्स में।

दोस्तों, मैं हूं आपके साथ स्मिति और मैं एक सवाल के साथ शुरू करना चाहूंगी। अगर यूपीएससी ना हो पाए तो क्या सच में कुछ नहीं बचा, या फिर पूरी दुनिया खुली पड़ी है जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं? आज के यूथ स्पीक्स में हम बात करेंगे यूपीएससी के प्रिपरेशन में साथ जुड़ी कड़ी मेहनत और वो सारे बैकअप ऑप्शन जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं।

0: दोस्तों आकाशवाणी रेनबो पर कार्यक्रम यूथ स्पीक्स में आज बात हो रही है यूपीएससी के बाद वाले ऑप्शंस की। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, लेकिन उसकी फाइनल सिलेक्शन तक कुछ बच्चे ही पहुंच पाते हैं। क्यों स्मृति, क्या आपने भी कभी इसका एग्जाम दिया है?
1: हाँ मैम, मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम एक बार दिया है, बट मैं क्लियर नहीं कर पाई। बट मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी, अपने आप को सीखने दिया, मैंने डिग्रीज परस्यू किया, इंटर्नशिप्स करे और फ्रीलांसिंग भी करी। स्टिल मैंने ट्राई किया कि मैं स्किल्स सीखते रहूं और यूपीएससी की प्रिपरेशन आगे भी जारी रखूं।
0: यानी कि अगर एक बार आप एग्जाम में असफल हो भी गए तो वो अंत नहीं है, उसके बाद भी आप अपने स्किल्स पर काम कर सकते हैं। प्रिपरेशन के साथ साथ ही आप डिग्री भी ले सकते हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ करने को है। तो स्मृति, क्या जब असफलता मिलती है तो नेगेटिविटी तो आती है, कुछ नकारात्मक ख्याल आते हैं, तो उनको आपने कैसे डील किया?
1: मैम, नेगेटिविटी तो हमेशा रहती है, बट ये मन में रहता है कि करना है, आगे भी करना है, सीखते जाना है और जर्नी कंटिन्यू रखनी है। ये अगर मैं नहीं भी कर पाऊँ तो स्टिल स्किल्स तो मैं सीख पाऊँगी ना, जो मुझे आगे एम्प्लॉयबल रखेंगे।
0: बिल्कुल, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ज़रूरी है अपने स्किल्स पर काम करना, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं और आगे भी आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि अटैम्प्ट दोबारा देना है, दोबारा कोशिश करनी है उस परीक्षा में पास होने की, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्मृति की तरह अपने आप को एम्प्लॉयबल भी रखना है। तो फिलहाल ये गाना आपके लिए यूथ स्पीक्स में।

0: तो दोस्तों, चलते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि सफलता मिले रास्ते में या फिर कभी कभी निराशा भी हासिल हो, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना है। और यही बात यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ भी है। तो स्मिति, अगर कभी निराशा हासिल हो यूपीएससी के सफर में, तो क्या बैकअप ऑप्शंस हो सकते हैं? आप किन ऑप्शंस को लेकर चली थी?
1: मैम, हम बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस को लेकर चल सकते हैं, जैसे दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स जो यूपीएससी के सिलेबस से सीधा जुड़ते हैं, जैसे स्टेट पीएससी एग्जाम्स, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ, रीजनिंग और जीएस, वही बस प्लेटफॉर्म अलग। मतलब इन एग्जाम्स में यूपीएससी की तैयारी सीधा काम आती है, जीरो से प्रिपरेशन नहीं करना होता है, तो हम इन ऑप्शंस को लेकर चल सकते हैं साथ में।
0: बिल्कुल स्मिति, तो कहीं ना कहीं वही सिलेबस, रीजनिंग, जीके, एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रिपरेशन के साथ आप दूसरे एग्जाम्स में भी अपीयर हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि उन एग्जाम्स का फॉर्म कब निकला आप उसका पता करती रहें, उनके फॉर्म्स भी साथ में भरें, जिससे कि आप उन एग्जाम्स में भी अपीयर हो सकें। और कहीं ना कहीं आपके लिए जो मौके हैं आपके सामने, उनके लिए आप अप्लाई करें, कोशिश तो करें, क्योंकि अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे सफलता के मुकाम में आगे बढ़ेंगे।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
2: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मंगल भवन मंगल
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: करने का दम खम है, क्योंकि आपके अंदर जोश है, जुनून है, हौसला है, और इस हौसले के दम पर आप अपने सफर में, करियर के सफर में आगे बढ़ते रहेंगे तो जरूर सफलता आपके कदम चूमेगी। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे यूपीएससी के बाद जो करियर ऑप्शंस हैं वो आप क्या ऑप्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ऑप्शंस की बात की स्मृति, तो उस लिस्ट में अभी और भी नाम है स्मृति?
1: जी मैम, और भी हमारे पास बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस हैं, जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी CDS, जो आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का मौका देता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो आपको यूपीएससी ही कंडक्ट करता है लेकिन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए। नाबार्ड और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी एजेंसीज जो अपने एग्जाम्स का निकालती हैं, जिनका स्ट्रक्चर यूपीएससी से मिलता जुलता है। और यूपीएससी की प्रतिभा सेतु पोर्टल है, जो पहले पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम था, जिसके थ्रू नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी मिनिस्ट्रीज, पीएसयूज या ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल स्मृति, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सामने हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई प्लान बी नहीं है। हम बैकअप ऑप्शंस की बात कर रहे थे, लेकिन ये कोई प्लान बी नहीं है, क्योंकि ये सभी अपने आप में एक प्रेस्टीजियस करियर ऑप्शंस हैं। तो बिल्कुल इन ऑप्शंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस में बहुत कुछ सिमिलर होता है, तो इनके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस टॉपिक पर बात जारी रहेगी आपके अपने शो यूथ स्पीक्स में।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसे रास्तों की जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं। फेलोशिप्स, लैंग फेलोशिप के थ्रू आप सीधे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ पॉलिसी रिसर्च कर सकते हैं, कानून बनाने के प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं। यंग इंडिया फेलोशिप लीडरशिप और लिबरल आर्ट्स ट्रेनिंग देता है। टीच फॉर इंडिया फेलोशिप, गांधी फेलोशिप, स्वनीति फेलोशिप, पीएम रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप जैसी फेलोशिप ग्रास रूट गवर्नेंस में काम करने का रास्ता खोल देते हैं और इन फेलोशिप यूपीएससी प्रिपरेशन से सीधा जुड़ते हैं। एनालिटिकल और रिसर्च स्किल्स मांगते हैं ये फेलोशिप। अगर आपको पढ़ना या डीप रिसर्च करना पसंद है तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जीएस या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ाना, कॉलेजेस में टीचिंग पोजीशंस या मास्टर पीएचडी के थ्रू रिसर्च फेलोशिप से जुड़ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से एस्पिरेंट जो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते हैं वही आज सबसे सक्सेसफुल एजुकेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हैं।

0: बिल्कुल दोस्तों, आपके सामने पूरा आसमान है उड़ने के लिए, आपके सामने है बहुत सारे ऑप्शंस। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रक्चर है सिलेबस का, वो जुड़ा हुआ है कुछ और एग्जाम से भी, और आप उसी सिलेबस के साथ कई दूसरे एग्जाम्स को भी फेस कर सकते हैं। स्मृति, हमने बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस की बात की यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सारे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए थे, तो क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और ऑप्शंस हैं?
1: जी मैम, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक्टिवली हायर किए जाते हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट के रोल में, पब्लिक पॉलिसी रिसर्च, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, इन सभी रोल में वही स्किल चाहिए होती है जो यूपीएससी प्रिपरेशन में बनती हैं, एनालिटिकल थिंकिंग, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग और करंट अफेयर्स की गहरी समझ। और इसके साथ साथ हम स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप, सोशल इंटरप्राइजेस, इसमें भी फोकस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, आपके सामने पूरा आसमान खुला हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन ऑप्शंस को समझने की, जानने की और सही टाइमिंग की जरूरत है, जिससे कि आप अपने करियर को एक सही मुकाम पर पहुंचा सकें।

0: दोस्तों, नैना भर जाते हैं जब निराशा हाथ लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दौर को, उस समय को डील करना आसान नहीं होता। तो स्मिति, जब आपने इस फेज को झेला था, जब आपने असफलता झेली थी, तो आपने उसको कैसे डील किया?
1: सबसे पहले तो मैम, हमें अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और एक रिजल्ट आपकी पूरी पहचान नहीं होती, और ना एक सिंगल रास्ता होता है। तो अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बात करते रहिए, और खुद का भी ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, और वर्क करते रहिए, सीखते रहिए।
0: तो जब ऐसा दौर आपने देखा, तो आपने अपने परिवार में किससे बात की?
1: मैंने अपनी माँ से बात किया। उन्होंने मुझे समझाया कि सिर्फ प्रिपरेशन सब कुछ नहीं होता, स्टडीज ही नहीं होती है, उसके आगे भी जिंदगी होती है। बट मैं ही नहीं मानी।
0: तुमने माना, इसीलिए तुम जुटी हुई हो अपने सपने को पूरा करने के लिए, प्रिपरेशन कर रही हो, दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई कर रही हो, और कहीं ना कहीं इस मैदान में टिकी हुई हो, क्योंकि तुम्हें जीतना है।
1: जी मैम।
0: और यही संदेश हम अपने सभी श्रोताओं को भी देना चाहेंगे कि हमें जीतना है, आगे बढ़ते रहना है, और इस मुकाम को, अपनी मंजिल को हासिल करना है। इसी नोट के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगी बाय। और स्मिति, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने का, और हमारे श्रोताओं से बात करने का, और इतने अहम मुद्दे पर बात करने का, अपने अनुभव साझा करने का।
1: जी मैम, थैंक यू।
0: तो फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ, और इसके बाद आकाशवाणी रेनबो पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट। इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है हमारे साथ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार।
1: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत का प्रस्ताव आया था और सुबह 11:50 से इस पर चर्चा जारी है। श्री नड्डा ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में पूर्ण हुई और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रारंभिक चर्चा से विस्तार हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शाम करीब 4 बजे सरकार को एक लिखित याचिका सौंपी। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच समिति SIT की गठित की जा सकती है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। पूर्व न्याय

0: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहन्ना की पीठ ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा के कथित गबन की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी से मुलाकात की। श्री नायडू ने कहा कि श्री अब्दुल्ला ने भारत के तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। इसमें रखरखाव, मरम्मत और संचालन तथा विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि मजबूत हवाई संपर्क लंबे समय से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का मजबूत आधार रहा है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम की यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थयात्रा को अस्थिर रूप से रोकने का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह फैसला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both houses of parliament witnessed multiple adjournments amid uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case, on the first day of the monsoon session today. Later, the Lok Sabha and the Rajya Sabha were adjourned for the day. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, the House paid tributes to six of its former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Sani. After obituary reference, when the Speaker tried to take up the questionnaire, the opposition members, including from Congress and Samajwadi Party, raised the issue of paper leak of NEET examination. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in smooth functioning of the House and maintain decorum, but the opposition members continued with their protest, leading to adjournment of the House till 12 noon, when the Lok Sabha House met after the sixth adjournment at 3 p.m. Similar situation prevailed in the House, forcing the chair to finally adjourn the House for the day. The Rajya Sabha also witnessed multiple adjournments before being finally adjourned for the day. The House today witnessed six adjournments over the NEET issue. In the Rajya Sabha, the proceedings began at 11 a.m. with the oath of the newly elected members. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal today introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance to increase the number of Supreme Court judges from 33 to 37. Earlier, speaking to media ahead of the commencement of the session, Prime Minister Narendra Modi today expressed hope that the monsoon session will be as productive as the monsoon itself, saying both play an important role in the nation's progress and the well-being of its people.
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of the protesters in New Delhi. In a social media post, he said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government and the discussions have been ongoing since 11:50 a.m. this morning. The minister said that the meeting took place in a cordial atmosphere. An initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maia Sandu today agreed to strengthen bilateral cooperation across key sectors including trade and investment, agriculture, healthcare, renewable energy,

0: প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতেই হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण व्यवहार करने, किसी भी गैर कानूनी और हिंसक गतिविधियों में शामिल न होने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मियों द्वारा जारी किए गए कानूनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल को यह निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि क्या अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जा सकता है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से राम मंदिर चढ़ावा विवाद का राजनीतिकरण न करने को भी कहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि उसका काम सिर्फ उचित जांच सुनिश्चित करना है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को बताया कि आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और अब राज्य पुलिस इसकी जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर से सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि यह यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली राजकीय यात्रा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Both houses of parliament witnessed multiple adjournments on the first day of the monsoon session today, following uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to six former members who passed away recently. The house also paid tributes to Father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. However, question hour could not be taken up as opposition members from the Congress and the Samajwadi Party raised slogans over the NEET issue. Despite repeated appeals by Speaker Om Birla and later by Presiding Officer Dilip Saikia to maintain order and allow the House to function, the protests continued, leading to adjournment of the House for the day. The Rajya Sabha also witnessed repeated disruptions. The House was adjourned multiple times despite efforts by Chairman C.P. Radhakrishnan and Deputy Chairman Harivansh to conduct business. Later, the upper house was also adjourned for the day. Earlier, speaking to media ahead of the commencement of the session this morning, Prime Minister Narendra Modi expressed hope that the monsoon session will be as productive as the monsoon itself, saying both play an important role in the nation's progress and the well-being of its people.
3: Monsoon ho ya monsoon satra, agar dono proactive ho, to bahut hi productive hote hain. और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
2: President Draupadi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The President was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for the Indian business. Earlier, President Murmu and her Moldovan counterpart, Maia Sandu, held delegation-level talks. She also paid floral tributes at the monument of Stefan Chel Mari C. Svanth in Chisinau. The Supreme Court has asked the Solicitor General to take instructions if a special investigation team, SIT, can be set up to probe the alleged embezzlement of donations at Ram Temple in Ayodhya, Uttar Pradesh. It also asked the parties not to politicize the Ram Temple donation row. The court said that the Ram Temple donation row is a simple case of commission of crime and the court is just to ensure proper investigation. The Solicitor General told the court that SIT was constituted to probe allegations and now the state police is investigating it. The apex court will hear the plea again on 27th of this month when Uttar Pradesh government will apprise it about the SIT probe in matter. Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said a proposal came from the protesters to hold talks with the government and the discussions have been ongoing since 11:50 a.m. this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. The Delhi police has appealed to all the protesters in New Delhi to maintain peace, exercise restraint and cooperate with the police in ensuring peace and public order. In a video message

0: খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: আকাশবাণী।

0: जॉर्डन देशस्य दक्षिण दूरस्थ क्षेत्रे पतितम् येन कापि जनधन हानिः न जाता। समाचार माध्यमानुसारम् एतानि क्षेपणास्त्राणि जॉर्डन देशस्य दक्षिणतटीय नगरे अकाबा इत्यत्र स्थितान् अमेरिकी विमानस्थानकान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षिप्तानि आसन्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना उद्घोषिता। इति वार्ताः।
1: बातरी पासते पुनर्भति आहिछो जुबवाणीर अनुष्ठान माजलै। एया आकाशवाणी गुवाहाटीर प्राग्जोतिषपुर। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম এফৰ 99.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত। নিবেদন কৰিছোঁ অৰিণীতা গোস্বামীৰ কণ্ঠত বৰগীত।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनाव में स्टेफान सेल मारी सीफेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ काम करने की बड़ी संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनाव में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये यात्रा पहली राजकीय यात्रा है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: লক্ষ্মী সিং লক্ষ্যারকণ্ঠৰ ভজন্তীৰে সামৰা হল আজিৰ ভজনৰ অনুষ্ঠানটি। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता।

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसिस फ्रेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्डोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं।

0: रेनेस आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
3: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है।

0: गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: खलीफा अल थानी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री नादेन दला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के खम्मम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से, जो अभी तेलंगाना में है, 12वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। श्री राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री नादेन दला भास्कर राव का निधन 90 वर्ष की आयु में 22 अप्रैल 2026 को हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। श्रीमती ओमवती देवी उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय क्षेत्र से 12वीं लोकसभा की सदस्य थी। वे श्रम कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सदस्य रही। इससे पूर्व वे 4 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्रीमती ओमवती देवी का निधन 77 वर्ष की आयु में 8 मई 2026 को बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री सुधांशु सील पश्चिम बंगाल के कोलकाता उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वह शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य थे। इससे पूर्व वे पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सुधांशु सील जी का निधन 81 वर्ष की आयु में 14 मई 2026 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रक्षा संबंधी संसदीय समिति तथा वित्तीय संबंधी संसदीय समिति के सभापति भी रहे। वह अन्य कई संसदीय समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्हें सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री तथा शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री खंडूरी जी 2 बार उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का निधन 91 वर्ष की आयु में 19 मई 2026 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। श्री केपी धन पालन केरल के चाला कुंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य तथा कंप्यूटर के प्रावधान संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। श्री केपी धनपालन का निधन 76 वर्ष की आयु में 30 मई 2026 को एर्नाकुलम केरल में हुआ। श्री प्यारेलाल संगवार उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व 2 कार्यकालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्यारेलाल संगवार का निधन 71 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2026 को दिल्ली में हुआ। सभा अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी और उसे विकास और समृद्धि की महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी का निधन 74 वर्ष की आयु में 12 जुलाई 2026 को निधन हो गया है। सभा महामहिम अमीर शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर कतर के लोगों और शाही परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्न मान्य सदस्यगण प्लीज, आप निधन संबंधी उल्लेख के समय सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नहीं, सदन के अंदर ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूं। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपराओं और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज, प्रश्नकाल प्रश्न नंबर वन, धवन लक्ष्मण भाई पटेल।
1: प्रश्न नंबर एक।
2: प्रश्न संख्या एक, क्या संस्कृति मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क भारत की धरोहर पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई ज्ञान भारतम पहल के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं? ख क्या भारत की पांडुलिपि और ज्ञान की विरासत के संरक्षण के लिए उक्त पहल में दक्षिण गुजरात के वलसाड निर्वाचन क्षेत्र के ढोडिया, कोकना और वर्ली समुदायों सहित जनजातीय समुदायों की मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं का प्रलेखन शामिल है? ग उक्त पहल के अंतर्गत ऐसी जनजातीय ज्ञान परंपराओं सहित प्राचीन पांडुलिपियों और ज्ञान की परंपरा के डिजिटीकरण, परिरक्षण और प्रसार में कितनी प्रगति हुई है? घ ये पहल भारत की सभ्यता और ज्ञान की विरासत को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले व्यापक प्रयासों के साथ किस प्रकार जुड़ती है? और अंग क्या सरकार के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग सहित इन डिजिटीकृत संसाधनों के साथ विद्वान जन के व्यापक जुड़ाव, सहयोग और लोगों के लिए इनकी सुलभता हेतु कोई रूपरेखा है?
1: मेरा प्रश्न मंत्री जी से यह है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान भारत का पहला उद्देश्य और उसके प्रमुख घटक क्या है, तथा दक्षिण गुजरात के वलसाड संसदीय क्षेत्र के ढोडिया, कोकड़ा और वार्ली जैसे जनजाति के मौखिक और पांडुलिपि परंपराओं के दस्तावेजीकरण किया जा रहा है और इसमें AI का उपयोग किया जा रहा है?
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, विरासत हमें दिशा भी देता है, विरासत हमें दर्शन भी देता है, और इसलिए मोदी जी ने विकसित भारत की जब कल्पना करी तब रेड फोर्ट से अपने उद्बोधन में कहा था कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए हम प्रेरणा कहाँ से लेंगे? मोदी जी ने प्राण दिलवाते हुए देश को कहा था कि हम विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प करेंगे विकसित भारत बनाने का। दूसरा प्रण दिलवाते हुए गुलामी को, मानसिकता को छोड़ने की बात कही थी, और तीसरा प्रण दिलवाते हुए मोदी जी ने कहा था कि विरासत से प्रेरणा लेकर हम विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मेनू हमारी विरासत है, और आज मंदिर के रूप में, शोक संस्थान के रूप में, महाविद्यालयों में, मठों में, जैन भंडारों में और निजी संग्रहालयों में हमारे मेनू स्क्रिप्ट है। ये मेनू स्क्रिप्ट को हम ज्ञान भारत मिशन के द्वारा उसको आरक्षित करने के लिए, डिजिटलीकृत करने के लिए, रिसर्च जीवन बनाने के लिए, जन सुलभी बनाने के लिए मोदी जी ने ज्ञान भारत मिशन का लॉन्च करा, और ये ज्ञान भारत मिशन के द्वारा देश में आज 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट का सर्वे करा गया। उसमें से ये मैन्युस्क्रिप्ट में से 8 करोड़ अब डिजिटलाइज हो चुकी है, और उसमें से 3,74,000 मैन्युस्क्रिप्ट अब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और उसमें माननीय सदस्य ने कहा है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में भी कोई जो मैन्युस्क्रिप्ट होगी उसको भी सर्वे में शामिल। स्तर पे उसको भी उसके ऊपर भी संशोधन कराया जाएगा और डिजिटलाइज करा जाएगा।
0: मान्य सदस्यगण, संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च संस्था है, मेरा आपसे आग्रह है आप सदन के अंदर साथ चर्चा करें, संवाद करें, लोगों की जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को रखें। मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना तख्तियां लेराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
2: अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 10:13 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं काशिफ अहमद की गजलों को हमारे कार्यक्रम गुलदस्ता में।